किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों के गीले आंसू चलते हैं।

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत के मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी।

0: दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है।
1: लाख बार उसमें

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त सविता स्वागत करती है कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप पर। जी हाँ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और 10:43 हो चुके हैं और पूरा एक घंटा हम रहेंगे आपके साथ, करेंगे

जी हाँ दोस्तों, बाजीगर हो बाजीगर, बाजीगर के साथ बाजीगरी करते करते हम जिंदगी के इस मुकाम पर आ पहुँचे हैं कि अभी दुनिया को समझना सीख चुके हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के जो हालात होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, गिरना और उठना, उठकर फिर संभलना, सब कुछ हमें हंसना रोना ज़िंदगी सिखा देती है। और फिर शिकायतों के दौर के साथ साथ उनसे समझौता करना, उन पर विजय पाना और उनके हर हार के बाद एक सफलता प्राप्त कर लेना हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। मैं आपकी दोस्त सविता एक बार फिर से कर रही हूँ स्वागत आपका नॉन स्टॉप गपशप पर। और हम बात करेंगे ढेर सारी, क्या बातें करेंगे वो तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और गीत सुनवाएंगे, क्योंकि सुना है आपके शहर में बारिशों का मौसम है।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप पर, और बढ़ते हैं आज के दिन के सेगमेंट में।
0: आज के दिन
2: सेगमेंट में हम आज के इतिहास को करेंगे आपके साथ साझा। दोस्तों, बदलती है सभ्यता, बदलता है युग, बदलती है पीढ़ी, बदलती हैं कहानियाँ, लेकिन इतिहास इतिहास नहीं बदलता बल्कि बढ़ता है। जुड़ते हैं बहुत से दिन, तारीखें, तथ्य, घटनाएं,

और साक्षी होती है पूरी की पूरी सदी। और ऐसे ही इतिहास को साझा करने की कोशिश रहती है हमारी आपके साथ। तो दोस्तों, आज का दिन 23 जुलाई का दिन कई शताब्दियों की ऐतिहासिक घटनाओं से भरा हुआ है। 1215 में इसी दिन फ्रेडरिक द्वितीय को आचेन में रोमन राजा के रूप में ताज पहनाया गया था, जो पवित्र रोमन साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस दिन कई महत्वपूर्ण सैन्य घटनाएं भी हुई। 1812 में नेपोलियन के रूस पर आक्रमण के दौरान मोगिलेव का युद्ध, जिसमें फ्रांस को मामूली जीत मिली थी नवाचार के क्षेत्र में। 23 जुलाई 1829 को विलियम ऑस्टिन वर्ट द्वारा अमेरिका के पहले टाइपोग्राफर का पेटेंट कराने के लिए याद किया जाता है, जो टाइपराइटर का पूर्ववर्ती था जो और संचार प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग का संकेत था। इसके अलावा यह दिन कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं से जुड़ा है, जिसमें 1798 में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा अलेक्जेंड्रिया पर कब्जा करना शामिल है। दोस्तों, आज का दिन राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, सूचना के प्रसार प्रचार के महत्व और संचार क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका के लिए याद किया जाता है। राष्ट्रीय हॉट डॉग दिवस, जी हाँ, ये एक ऐसा दिन है जब कई लोग देश के सबसे लोकप्रिय फास्ट फूड में से एक का आनंद लेने और जश्न मनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज के दिन हुए थे महान, कई महान व्यक्तियों ने जन्म लिया था, जिनमें थे तारा शंकर बंदोपाध्याय, बंगाली भाषा के एक भारतीय उपन्यासकार, जिनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1898 में। इन्होंने 65 उपन्यास, 53 कहानी संग्रह, 12 नाटक, 4 निबंध संग्रह, 4 आत्मकथाएं, 2 यात्रा वृतांत लिखे और कई गीतों की रचना की। उन्हें रविंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ताराशंकर बंदोपाध्याय ने मुख्य रूप से युद्धकाल के दौरान लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में उपन्यास और लघु कथाएं लिखी थीं। बातें तो हमारे साथ और भी करनी है और ढेर सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल सुनवाऊंगी अरमान मल्लिक की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, आज के दिन एक भारतीय पार्श्व गायक, संगीत निर्देशक, गीतकार, निर्माता और बॉलीवुड अभिनेता और हम सबके प्रिय गायक कलाकार हिमेश रेशमिया का जन्म हुआ था 1998 में फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। संगीत निर्देशक के रूप में उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की और 2007 में फिल्म आपका सुरूर से अभिनय की शुरुआत की। रेशमिया ने जी टीवी पर अंदाज, आहा अमान, आशिकी, अमर प्रेम और जान जैसी टीवी श्रृंखलाओं का निर्माण भी किया। इन्होंने कुछ शो भी किए और शीर्षक ट्रैक भी बनाए। दोस्तों, 23 जुलाई 1973 को भारत में इनका जन्म हुआ। तो आइए हिमेश रेशमिया को उनके जन्मदिन पर हम बधाई देते हुए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत श्रेया घोषाल के साथ।

0: हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, और हिमेश रेशमिया को हम उनके जन्मदिन पर देते हैं फिर से एक बार बधाई। और दोस्तों, अब वक्त आ चुका है कि आप हमारे साथ जुड़ करके नॉन स्टॉप गपशप करें। बिल्कुल दोस्तों, नॉन स्टॉप गपशप में आज का टॉपिक क्या है, क्या बात करनी है, तो बस बात इतनी सी है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, बिल्कुल कई बार बारिश में आप कहीं जा रहे हैं और नहीं जा पा रहे बारिश होने के कारण, और दोस्तों के साथ बैठ करके आपका अड्डा होता है, तो वो क्या खास बात होती है आपके साथ, दोस्तों के साथ टॉपिक क्या होता है बात करने का, बस मुझे इतना सा ही जानना है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, वो हमें सुन पा रहे हैं कि नहीं समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। हेलो, तो दोस्तों हम फिर से कॉल लेंगे और 2247912 पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम चलेंगे कोलकाता कल्चर की ओर।
1: कोलकाता कल्चर,
0: तो दोस्तों 23 जुलाई को कोलकाता में साहित्यिक और कला का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, अनूठा संगम आपको देखने के लिए मिलेगा, और आप इस दिन शहर के प्रमुख सभागारों में प्रतिष्ठित नाटकों के मंचन और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जा सकते हैं, जैसे कि द फेयरवेल लेटर, शेर कविता, ज्ञान मंच में शाम 7 बजे रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास शेर कविता का विशेष पाठ प्ले रीडिंग है। इसे यहाँ पर कलाकार प्ले रीडिंग करेंगे। इसके अलावा है, अगर आप घर पर बैठे OTT नेटफ्लिक्स पर देखना चाहते हैं क्राइम ड्रामा फिल्म, तो द डेट कलेक्टर स्ट्रीम होने जा रही है, उसे आप देख सकते हैं। और फिल्मों के शौकीन हैं, जुलाई का ये हफ्ता है बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, 20 से 26 जुलाई के बीच सिनेमाघरों में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, वो कौन कौन सी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रोता, तो देखते हैं वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो, उनका भी फ़ोन कट चुका है, तो फ़िलहाल हम सुनेंगे एक गीत और उसके बाद बात करेंगे।

0: जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे हमारी मंजिल अपने मुकाम पर आ पहुंची है और 10:49 हो चुके हैं और जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक और दोस्त। तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: मैं दीदी शौभिक शौकर बोल रहा हूँ कस्बे से।
0: ओ शौभिक जी, जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं।
1: थैंक यू दीदी, मैं अच्छा हूँ, आप?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ। और अभी फिलहाल कहाँ पर हैं?
1: मैं घर पर हूँ, मैं कुछ देर में मैं निकल जाऊंगी और नौकरी के लिए काम पे जाऊंगा।
0: अच्छा अच्छा, तो देर से जाते हैं थोड़ा।
1: हाँ, मेरा वो 12 बजे से मेरा काम है।
0: ओके, तो हाँ, अच्छी बात है।
1: 8 बजे से।
0: अच्छी बात है, हमारा प्रोग्राम सुन पाते हैं।
1: हाँ हाँ दीदी, मैं आपका जो प्रोग्राम है ना इस टाइम में सुन पाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग का मिलता है
0: जी।
1: हाँ, किसी के बर्थडे हो तो जैसे आप दीदी सुन रहा है, गाना सुन रहा है इमरान ना, वो गाना जो सुन रहा था इमरान हस्बैंड का जो गाना सुन रहा था बहुत अच्छा लग रहा था और नॉस्टैल्जिक में हम हो गया था दीदी।
0: अच्छा चलिए, आप लोग खुश रहें और आपको अच्छा लगे, बस यही हमारी कोशिश रहती है।
1: हाँ दीदी, हाँ दीदी, और हम लोग क्योंकि सुबह सुबह हम लोग जो प्रोग्राम सुनता है ना एक घंटे के लिए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग जब हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं मन की बात जो होता है ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग इस टाइम में अपेक्षा करता है तो कब आपके साथ कोई आरजी के साथ बात करूंगा क्योंकि यहाँ से ना हम लोग का एक अच्छे से एक पावर मिल जाता है, सारा दिन का जो पावर ऐसे से मिल जाता है दीदी, ये मैं बोलूंगा दीदी।
0: बिल्कुल, तो क्या अपने दोस्तों के साथ भी आपको पावर मिलती है, बताइए।
1: हाँ दीदी, वो रोज नहीं मिलते है दीदी, वो वीकेंड में मिलते हैं।
0: हाँ।
1: और शनि रविवार हम लोग को मिलते हैं, हम लोग जो जब विशेषकर संडे में हम लोग को मिलते हैं, कभी हम लोग को गेट टुगेदर हम करते हैं तो कोई भी मिलना जुलना हो तो वहाँ पर जाते हैं वो इवनिंग टाइम में, वो हम लोग को साथ एक के साथ खाना पीना, वही चाय खाना, वो पकौड़ा खाना, इस टाइम में तो बहुत अच्छा सा पकौड़ा पकौड़ा खाते है और वो कॉफी रहते हैं। और हाँ दीदी,
0: अभी अभी आप पकौड़ा और यदि कॉफी की बात करेंगे ना तो मेरे मुंह में यहाँ बैठे बैठे पानी आ जाएगा क्योंकि मेरा भी दिल करेगा कि कोई स्टूडियो में मुझे खिला के जाए।
1: दोस्त के साथ हम लोग मिलजुट के हम लोग को एक कॉलेज की फ्रेंड बोलिए, वो पारा के फ्रेंड बोलिए, एक साथ हम लोग को एक नॉस्टैल्जिक में भर जाते हैं वो, हम लोग गप्पो गप्पो करते हैं और कभी कभी हम लोग दीदी गंगा पार में भी जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोग को एक आध डाटा होता है दीदी।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने अपने दोस्तों के साथ बात करके अपने मन को हल्का किया और करते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है।
1: हाँ दीदी, यही अच्छी बात है और इससे मुझको लगा सबको यही करना चाहिए, दोस्त के साथ बात बात करना, मन की बात करना, घर में आए तो काम से एक फोन करना, उसको हालत जानना, मुझको लग रहा है यही करना चाहिए दीदी।
0: बिल्कुल, तो शुक्रिया शौभिक जी।
1: हाँ हाँ, थैंक यू दीदी।
0: तो शौभिक जी ने तो कहा कि हम जब दोस्तों के साथ मिलते हैं तो पकौड़ा वगैरह, चाय, कॉफ़ी, ये सब खाना होता है और आई एम श्योर कि आप सब जिनकी बातें मैं सुन नहीं पाई क्योंकि वक्त अब हमारे पास ज़्यादा है नहीं और सुनना चाहते थे उनकी भी मन की बातें लेकिन फ़ोन कॉल हम और ज़्यादा नहीं ले पा रहे, लेकिन मुझे पता है कि आप सभी यही कहने वाले हैं कि हम अपने मन को हल्का करते हैं दोस्तों के साथ। जो पायल ने भी कहा कि हम कुछ बातें ऐसी होती हैं जो परिवार में किसी के साथ नहीं कह पाते, तो रिलैक्सेशन के लिए जब सैटरडे संडे हम मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ तो उनसे बातें करके हमें ऊर्जा मिलती है और मन हल्का हो जाता है। और आप सब ऐसा ही करें, ऐसी ही मैं तो कहूँगी। और अब फिलहाल अंतिम गीत आपके लिए पेश करते करते आपसे विदा लूँगी। जी हाँ, लेकिन विदा लेने से पहले इतना कहूँगी कि 11:10 पर FM गोल्ड यानी खरा सोना पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में मैं मिलने वाली हूँ आपके साथ, तो मिलना ना भूलें। और हाँ, एक बहुत अच्छे गीत

आर के गीत आज आपको सुनवाने वाली हूँ, और साथ में 25 तारीख को नॉन स्टॉप गपशप पर मैं फिर एक बार मिलूँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए। और ज़िंदगी कहीं यदि आपको पछाड़ कर फेंक दे, जी हाँ, यदि कहीं आपको ज़िंदगी कहीं पीछे छोड़ दे, तो समझ लीजिए कि आप एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बड़ा सोच रखा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी तरह से गाने सुनते रहिए, सुनाते रहिए FM रेनबो 107 पर, हमेशा हमसे मिलिए। तो चलते चलते अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज़ में सुनवाएंगे आपको ये गीत।

0: जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकू आरजे, जो कि आकाशवाणी कोलकाता में आप सभी का स्वागत करती है। हर दिन की तरह आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर आज का कार्यक्रम तीन का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर तीन का तड़का। तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 एफएम रेनबो पर।
0: जी दोस्तों, दिल से दिल मिले तो महफिल बन जाती है और सुर से सुर मिले तो जिंदगी बदल जाती है। आज लगेगा सुरों का ऐसा बेमिसाल तड़का कि धड़कते हुए दिलों की धड़कन बढ़ जाएगी। दोस्तों, रिंकू के साथ आप पूरे एक घंटा मजा से तीन का तड़का का शो सुनिए और अपने मन को आनंदित कीजिए। सबसे पहला तड़का है अमित किलम की आवाज में, आइए सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे मसान फिल्म से ये बढ़िया सा गीत अमित किलम की आवाज में। दोस्तों वैसे तो उसके बोल लिखे थे वरुण ग्रोवर ने और संगीत से सजाया था इंडियन ओशंस ने। दोस्तों मसान फिल्म जिसे सच में बहुत अच्छा माना गया है और 2015 की यह फिल्म थी। ऐसे कहा भी गया है कि महफिल भले ही खत्म हो जाए पर यादें बाकी रहती है और जुबां भले ही खामोश हो जाए पर बातें बाकी रहती है। दोस्तों 3:12 हो चुके हैं और जल्दी जल्दी गीतों के साथ मैं आपके लिए एक और भी चीज़ लाई हूँ। जी हाँ, जो

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का रिंकू के साथ, और अभी है प्रस्तुत हमारा एक विशेष कार्यक्रम यानी कि परियोजना प्रस्तुति।
2: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की सबसे सफल और लोकप्रिय योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, और इसे जो आयुष्मान भारत योजना, जिसे PMJAY कहा जाता है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारी भरकम खर्च से बचाना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर साल मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। योजना के कुछ मुख्य लाभ है जिसे आपको जानना आवश्यक है। 5 लाख का मुफ्त बीमा हर पात्र परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक की मुफ्त कैशलेस बीमा पैसे दिए जाएंगे, जिससे इलाज मिलता है। अस्पताल में भर्ती का खर्च, इसमें अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले की दवाइयां, जांच और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल है, और कैंसर, दिल की बीमारी, किडनी, घुटने का प्रत्यारोपण और कोरोना जैसी लगभग 1949 से अधिक छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज भी इसके तहत मुफ्त होता है। इस कार्ड की मदद से, यानी कि आयुष्मान योजना कार्ड की मदद से, देश के किसी भी राज्य के सरकारी या योजना से जुड़े प्राइवेट अस्पताल में इसका मुफ्त इलाज कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने मापदंड तय कर दिए हैं। कच्चे मकान वाले परिवार, भूमिहीन परिवार, वे परिवार जिनमें कोई कमाऊ वयस्क यानी कि 16 से 59 वर्ष का ना हो, या जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं, शहरों क्षेत्रों के लिए कूड़ा उठाने वाले भिखारी, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, मोची, प्लम्बर, राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, रिक्शा चालक और सुरक्षा गार्ड आदि इसमें शामिल है। 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, सरकार ने जब देश के सभी 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इस योजना को खोल दिया है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। और आवेदन की लाभ पाने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट यानी कि PMJ.government.in पर जाकर MI Eligible पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर या फिर राशन कार्ड नंबर डालकर चेक करें कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। कार्ड कैसे बनवाएं? यदि आपका नाम लिस्ट में है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, CSC या किसी भी सूचीबद्ध सरकारी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होते समय वहां मौजूद आयुष्मान मित्र को अपना कार्ड दिखाए और अपना पूरा इलाज मुफ्त करवाए। जी हाँ दोस्तों, अब सुन रहे थे परियोजना प्रस्तुति।
2: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का

तड़का। आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

जी हाँ दोस्तों, जब शमा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सुर छिड़ते हैं तो दीवाने चले आते हैं। और अभी 15:27 हो चुके हैं, तो चलिए जल्दी से एक गीत सुना देते हैं और उसके बाद हम आपको विशेष कार्यक्रम यानी कि उमंग कार्यक्रम की ओर ले चलेंगे।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल, और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
2: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
1: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
2: जी।
1: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
2: जी।
1: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
2: जी।
1: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नौ वर्ष माना जाता है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
1: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
2: जी,
1: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
2: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं, और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम, जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
1: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
2: जी।
1: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
2: जी।
1: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
2: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उस समय लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
2: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
3: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
4: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
5: चलो पकड़ते हैं माधव को,
4: पकड़ लेंगे।
3: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला।

0: भी लड़का टीले पर चढ़ते हुए फिसल कर गिर गया।
1: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
0: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
1: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
2: जी महाराज, जी महाराज।
1: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
3: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
4: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
5: जी महाराज।
4: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
4: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
4: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटे महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
5: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
6: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे, हम स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
7: आज मैं राजा बनूंगी।
8: आज मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
7: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
5: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
7: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
5: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
8: हमने तो देखा है।
11: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
7: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
5: महाराज की जय हो।
12: जय हो।
5: महाराज की जय हो। जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
4: महाराज महाराज जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
6: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है?

0: शिला जब खोद कर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
1: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
2: चोरी।
0: राजा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
2: ये सच है। मैंने एक बार अपने एक कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
1: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
0: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
2: झूठ।
0: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
1: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
2: चोट? वो
0: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन, आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
1: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
0: राजा को क्रोध आ गया,
3: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूं, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ।
0: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
5: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
6: क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी।

0: अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ, अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
1: अरे मशकूब भाई।
2: जी जनाब।
1: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
2: लीजिए जनाब।
1: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो
2: जनाब, थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
1: रखो रखो।
2: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।
1: गर्मी में पानी पिलाया तुमने, रखो।
2: शुक्रिया
1: शुक्रिया।
0: अमृत वाला आ गया।
3: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
4: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
1: मशकूब भाई।
2: जी जनाब।
1: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
2: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
1: लाओ। बस बस।
2: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
1: सही कहा मशकूक भाई।
2: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
1: अभी तक तो कुछ नहीं।
2: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
1: अरे नहीं नहीं
2: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए साथ में।
1: भाई
2: जी,
1: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
2: क्या बात करते हैं,
1: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
2: इसमें नेकी की क्या बात है?
1: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
2: ये तो मेरा फर्ज था।
1: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
2: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
1: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
2: अच्छा,
1: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
2: ये तो बड़ा नेक काम है।
1: अब ये लीजिए।
2: ये किताब किस लिए?
1: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
2: अच्छा,
1: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
2: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
1: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
2: तौबा तौबा तौबा,
1: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
2: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
4: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
5: जनाब,
6: लाजवाब इंसान है वो।
4: क्या बात करता है,
6: क्या बात,
4: बहुत अच्छे इंसान।
3: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने लगा। जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
7: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। ही करूंगा।
2: ऐसा ही करूंगा।
3: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
7: पैसा लाए हो?
5: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
8: जमूर है, खाली हाथ चले आते हो।
5: खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है अकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए अकीम साहब।
8: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
5: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
8: बच्चे को गोद में उठाओ।
5: बच्चे की जान बचा लीजिए अकीम
8: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
5: मर जाएगा ये।
8: उठाओ,
5: मर जाएगा अकीम साहब।
8: चलो निकलो बाहर।
3: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब।

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बदस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्द आलूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं, आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ,
1: खैर जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब,
1: आप लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज, मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब के पास से सोने की तमाम ईंटें खत्म हो गईं, तो उसे मुस्तकबिल की फिक्र हुई। उसने फौरन मुसाफिर की दी हुई कीमिया की किताब उठाई, लेकिन ये देखकर उसका सारा नशा हिरन हो गया कि वो कीमती किताब तो पत्थर में बदल चुकी है।
3: ये मैंने क्या कर डाला, ये लालच में आके मैंने क्या कर डाला। क्या किया?

0: Μάφη, μάφη, γρέμα. Όμορφη το άλλο, άγρια. Κι αχού, ράγκα τζαμάκ.
1: वक्त गुजरता गया और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से सड़कों पर घूम घूम कर पानी बेचने पर मजबूर हो गया। एक दिन जब हस्बे मामूल मश्क उठाए चक्कर लगा रहा था,
0: अमृत वाला आ गया, क्या खूब रंग जमाक,
1: कि एक घोड़सवार उसके बिल्कुल करीब आकर कहने लगा,
2: अरे मशकूब, मुझे पहचानते नहीं? इससे पहले हम दो बार मिल चुके हैं, अब मुझे अच्छी तरह पहचान लो। लोग मुझे बू अली सीना कहते हैं। मेरी अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ है, मगर तुम्हारी संगदिली ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और दो कीमती किताबों को पत्थर बना दिया। अब ये पत्थर फिर से कीमती किताबों में उस वक्त तक नहीं बदल सकते जब तक कि तुम जैसे संग दिल लोग अपनी जिंदगी गरीबों और मोहताजों की भलाई के लिए वक्फ ना कर दें। जो भी शख्स ऐसा करेगा उसके दिल की गर्मी इन पत्थरों को पिघला सकेगी। इल्म और अक्ल सोने से नहीं खरीदे जा सकते, बल्कि सोना हासिल करने के लिए इल्म और अक्ल के साथ साथ दर्दमंद दिल भी पैदा करना पड़ता है।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लालच, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे अभी दिन का तड़का।
7: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं दिन का तड़का।
8: আকাশবাণী কলকাতা এফএম রেনবো প্রচার তরঙ্গে এই মুহূর্তের খবর পড়ছি। সুদীপ বসু। ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী দুই দেশে বসবাসকারী নাগরিকদের নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। গতকাল নতুন দিল্লিতে ভারত ইউএই কনস্যুলার বিষয়ক যৌথ কমিটির সপ্তম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে

0: जी हाँ, नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे रिंकू और आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो, जहाँ पर बरसता है सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और उसके गीत। आज की शाम बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि इस सुहाने मौसम पे मेरी स्टूडियो की महफिल में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ है बहुत सारे गीत और आपका प्यार। तो आइए शुरू करते हैं छायालोक। छायालोक में हम आज नजारा फिल्मों का सारे गीत आपके लिए बजाएंगे।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 एफएम रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
2: नजारा फिल्मों का

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

जी हाँ दोस्तों, उदित नारायण साथ में है, उद्भव और मनोहर उसके साथ जसपिंदर नरूला की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत हम दोस्तों मोहब्बत से। वैसे दोस्तों मौसम है आशिकाना, लेकिन हमारे साथ बने रहने के लिए आपको भी उसी तरह से आशिक मिजाज होना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:20 हो चुके हैं और आप 107 FM रेनबो पर रिंगू के साथ है। तो चलिए एक पल भी नहीं देरी करते हैं और सुनते हैं लकी अली की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
2: नजारा फिल्मों का,

जी हाँ दोस्तों, कविता कृष्ण मूर्ति के साथ अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज, क्या बेहतरीन ट्यून। यही तो है हम साथ साथ। दोस्तों आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो रिंकू के साथ, और मेरे प्यारे श्रोताओं आपको बता दूं कि ये जो बारिश का मजा है और आज की कोलकाता का जो हाल है वो सब एक साथ हमारे गीतों में और हमारे साथ आपके मन की बातों में इस तरह से समा गए हैं कि मौसम बहार, रहन बहार और स्टूडियो में बौछार आ ही चुकी है। वैसे दोस्तों ईमानदारी से बताऊं तो इस कड़कती और इस बेहतरीन शाम में जो आप बैठे बैठे शायद गरम गरम चाय और प्याज के पकौड़ों का मजा ले रहे हैं और मेरे गीतों को सुन रहे हैं, लेकिन दोस्तों गीतों को सुनते सुनते इन सब बातों को भी करते जाइए कि हम आपके साथ ही बने रहे और आप भी हमारे साथ बने रहे। वैसे सुनते हैं अगला गायक गीत सुखविंदर सिंह की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, वैसे तो बातों में सुखविंदर सिंह की आवाजों में यह जादू है कि आपके ऊपर इस तरह से छा जाएगा कि जैसे एक शायर ने कहा है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारी याद की खुशबू है इन हवाओं में, तुम साथ हो तो हर मौसम प्यारा लगे। जी हाँ दोस्तों, सुबह से ही कोलकाता का मौसम चाय और पकौड़े की हो रही है, बारिश की धीमी धीमी फुहारें आपकी भी गालों पे पड़ रही है। लेकिन दोस्तों एक बात बता देती हूँ कि स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:41 हो चुके हैं और अभी मैं एक और गीत बजाऊंगी, लेकिन इसके बाद हमारा एक विशेष कार्यक्रम जो दिल्ली से जाएगा आपके लिए प्रस्तुत होगा। लेकिन तब तक इसलिए एक गीत कविता कृष्णमूर्ति और अमिताभ भट्टाचार्य जी के आवाज में फिल्म बेकअप सिट से ये गीत सुनिए।

0: डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
1: ज्यूरिसप्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी ज्यूरिसप्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं, एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, विच आई ऑल्सो अग्री विद, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डज नॉट मीन कि कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। और ये मेन प्रोविजन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इन्वायरमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में, और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न of the Indian government as well as the Indian constitution. And few more provisions जो कि usually छूट जाता है लोगों के notice से, क्योंकि 48A and 51AG are the most important ones. But if you look at the provisions relating to local government, which is municipal corporations, उसमें भी explicitly functions में उनके mentioned होता है. If you look at part 9A of the constitution, which talks about municipal corporation, local government generally, कि you have to make a draft development plan for ecological conservation and environmental protection. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है। तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, विच इज मोर ऑफ एन अम्ब्रेला एक्ट जिसमें सारा एनवायरमेंट की सारी चीजें कवर होती हैं, बट दैट केम आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। स्पेसिफिकली सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड जो होते हैं जो वाटर और एयर एक्ट के अंडर काम करते हैं, एंड EIA notifications जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर से ही एमिनेट करता है। And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, जो wetlands की बात करता है, तो also we know, तो after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence, mein, when we talk about jurisprudence, it is all about law, so I'm talking about in a right-based manner, कि कितने तरीके के rights हैं, environment law कहां कहां से आ सकता है। So ये constitutional rights और fundamental rights, क्योंकि like I mentioned in the very beginning, उसमें mentioned नहीं था constitution में शुरुआत में, तो वो धीरे धीरे develop हुआ through amendments, but उसमें सुप्रीम कोर्ट का पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द केसेस, तो इट इज समथिंग विच पीपल से इन एनवायरमेंटल लॉ सर्कल्स, कि इफ यू टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ एनवायरमेंट लॉ, वो किसी रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेज वर्दी चंद का केस, जिसमें देर वॉज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इशूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के, वहां पे सिटीजन वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन, बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में CRPC जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ BNSS, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए, बट वहां पे म्युनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था।
0: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्सन्स हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है। बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट able to hire a lawyer और उसको पूरी कोर्ट की वो procedural technicalities नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ NGT also takes सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपेंसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स है अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देर वर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन अन हेल्दी इन्वायरमेंट, वो दून वैली का केस था स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मैंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। एंड यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ MC मेहता, ही वॉज अ बिग टाइम इन्वायरमेंटलिस्ट एंड लिटिगेटर। तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं, जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो वंस यू गेट अ राइट, व्हाट MC मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले, क्योंकि जब एक वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देयर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्वड। सो फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस। तो जस्ट टू टेक वन एग्जाम्पल, इन द MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, MC मेहता वेंट टू कोर्ट एंड इट सेड दैट ये टैनरी से जो पानी, जो केमिकल फैक्ट्रीज और टैनरी से जो वेस्ट निकल के पानी में जा रहा है विच इज पोल्यूटिंग द गंगा रिवर, इवेंचुअली द कोर्ट हैड टू ऑर्डर टू शट डाउन दीज टैनरीज। सो दिस नाउ राइट हैज टेकन इन द फॉर्म ऑफ अ रेमेडी एज वेल। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, इसमें कोर्ट ने पहली बार एक हाई लेवल पे इन्वायरमेंटल रिमीडिएशन के लिए कॉस्ट पे करने के लिए बोला केमिकल फैक्ट्रीज को। एंड द TN गोदावर्मन केस, लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, इसमें कोर्ट ने कंटिन्यूइंग मैंडमस इशू किया जिसमें कोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन का ये ओरिजिनली केस था और अभी

0: तक इस पे ऑर्डर्स और हियरिंग्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो दीज वेर द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें राइट्स और रेमेडीज काफी ज्यादा इवॉल्व किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by Anna A. Priya, Associate Legal, Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम, और अभी इस वक्त जो है हम सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर आपके साथ, और मेरे साथ बने हैं एक और भी खास मेहमान। जी हाँ, आप जैसे कि जानते हैं 1 जुलाई से FM रेनबो दो भागों में बढ़ चुका है, और एक भाग होता है कि आपको 7:08 मैं यानी कि रिंकू आपके साथ लगी थी और बनी हुई थी, लेकिन अगले भाग में आपके साथ होंगे हमारे मित्र रोशन मुरारकर जी। तो दोस्तों, अपने दिनों को याद करते हुए, गीतों की बातों को याद करते हुए उनके साथ बने रहिए, और रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
3: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
4: नजारा फिल्मों का।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 FM रेनबो पर एक बार फिर स्वागत है आप सुनने वालों का। आपका रेडियो वाला दोस्त लेकर आया है कार्यक्रम छायालोक। नाम तो आप जानते ही हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी बता देता हूं, आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके साथ है लेकर कार्यक्रम छायालोक। पसंदीदा नंबर पर फोन करना है आपको, नंबर बताऊंगा, हड़बड़ाइए मत दोस्तों। एक गाना पहले सुन लीजिए।

फ़ोन कॉल्स लेने का, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए भाई, क्योंकि भाई 2213-1341 नंबर है हमारा। और एक गाना जो आपकी पसंद का है, मुझे पता है ये गाना मेरी पसंद का भी है और आपकी पसंद का भी है, उसको बजा देता हूँ, आप तब तक सुनते रहिए। और सुनते सुनते अपनी उंगलियों को चलाकर आइए हमारे साथ, फरमाइश कीजिए अपनी पसंदीदा गीतों का, क्योंकि आपका ये दोस्त छायलोक लेकर, आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मरार का, आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहा है।

दोस्तों 2213-1341 पर कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, आइए उनसे जान लेते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो लगता है भाई ये अपनी बात कहकर चली गई। सुप्रिया थी हावड़ा से और वो सुनना चाहती थी फिल्म आग और शोला से ये गीत। आइए उनके पसंद का गीत सुनवा देते हैं, पता नहीं किस कारण से उनकी लाइन कट गई। मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत, आइए सुप्रिया की पसंद का सुनाते हैं। जब तक गीत सुनिए और फिलहाल नंबर डायल करते रहिए। नंबर एक बार फिर से बता देता हूँ 2213-1341। सुनाएंगे आपकी पसंद का गीत इस गाने के बाद।

0: फिलहाल तो भाई कोई कॉलर फ्रेंड हमारे नंबर पर आ चुके हैं 2213-1341 पर और हमें याद कर रहे हैं अपनी पसंद के गीत की फरमाइश करने के लिए। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार, बोलिए भाई।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: हम गाना का नंबर था
0: अच्छा, ये गाना ये फिल्म आपने देखी है? वो तो सुनाएंगे ही, लेकिन क्या आपने ये फिल्म देखी है?
1: सुनाई नहीं दे रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा।
0: हेलो, ये फिल्म आपने देखी है?
1: आवाज नहीं आ रहा आपका।
0: मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, कुछ समस्या है लगता है। हेलो,
1: आपका आवाज नहीं आ रहा।
0: चलिए ठीक है दोस्तों, कॉलर फ्रेंड को हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही, किंतु उनकी पसंद हम जान चुके हैं। उनकी पसंद का गीत मुद्दत फिल्म का ये लीजिए।

0: मेरे दोस्तों, अपने प्यार को बढ़ाने के लिए हमारे कॉलर फ्रेंड 2213-1341 पर आ चुके हैं, उनसे बातें करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते।
1: मैं बरगाचा से प्रशांत धोक बोल रहा हूँ।
0: बोलिए भाई प्रशांत जी, कैसे हैं?
1: हाँ ठीक हूँ, आप भी शायद अच्छे ही होंगे। और प्रोग्राम में नए तरह से श्रोताओं को बातचीत हो रही है, श्रोताओं के साथ के साथ ये और भी अच्छा लग रहा है।
0: दिल गार्डन गार्डन हो गया आपका?
1: हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा,
1: श्रोताओं के गाने पसंद कर सुनने को मिल रहा है, इसलिए तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: क्या बात है, और बताइए।
1: हाँ, मुझे अमित कुमार का गाया हुआ अफसाना प्यार का टिप टिप टिप बारिश शुरू हो गई।
0: क्या बारिश हो रही है आपकी तरफ?
1: बारिश पड़ रहा है।
0: हाँ जी,
1: थोड़ा थोड़ा करके पड़ रहा है, गिर रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो क्या पकौड़े उकड़े खाए आपने शाम में?
1: ऐसा कुछ नहीं है।
0: ऐसा नहीं है, चाय तो पी होगी?
1: हाँ चाय तो, नाश्ता तो हो गया।
0: अच्छा, लेकिन पकौड़ा समोसा नहीं चला ना?
1: नहीं, नहीं।
0: अच्छा चलिए ठीक है, बारिश का मौसम तो अभी चल रहा है।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते। चलिए भाई दोस्तों, हमारे कॉलर फ्रेंड तो भाई समोसा पकौड़ा नहीं खाए हैं अभी तक, बारिश हो रही है। कोई बात नहीं, उनकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं। और फिलहाल इस गीत के साथ साथ आपको मैं फिर से बता दूं कि आपका दोस्त रोशन मुरारका आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा है। आप अपनी पसंद के साथ आइए, नंबर हमारा है 2213-1341। नंबर एक बार फिर से जान लीजिए, 2213-1341, और कॉलर फ्रेंड की पसंद का ये गीत।

0: दोस्तों टिप टिप टिप बारिश तो शुरू हो गई और हमारे फोन लाइन की बत्ती भी टिप टिप टिप ब्लिंक कर रही है। वो बता रही है कि कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो हेलो,
1: गुड इवनिंग रोशन जी।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं मोनिरुद्दीन लस्कर बात कर रहा हूँ दक्षिण शांकराई लाहौड़ा से।
0: बोलिए भाई मोनिरुद्दीन जी, कैसे हैं
1: आप? तो आज का शाम रोशन कर दिया।
0: अच्छा, लेकिन मैंने तो आपका हाल पूछा।
1: आपके पास रिक्वेस्ट है, अगर आपको पलकों पे ख्वाब रख जाए कोई, अगर आपकी सांसों पे नाम लिख जाए कोई, इसीलिए ये वादा करो भूलोगे नहीं हमें, अगर हमसे भी ज्यादा प्यारा दोस्त मिल जाए कोई।
0: क्या बात है, क्या बात है, मितवा भूल न जाना है ना। एक गाना था ना मोहम्मद अजीज का, याद होगा ना, मितवा भूल न जाना है ना। बताइए मुरुद्दीन जी, और कैसे हैं, अच्छे हैं सब?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं।
0: क्या सुनना चाहेंगे
1: आपको? और खुदा की दुआ से
0: जी,
1: और इसीलिए मैं ये गाना चूज करता हूँ आपके लिए।
0: अच्छा, हमारे लिए, क्या बात है।
1: तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे।
0: अच्छा मुरुद्दीन जी, ये बताइए गाना वाना गाते हैं क्या, गुनगुनाते हैं कभी?
1: नहीं, गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन गाना अच्छा चूज करता हूँ।
0: नहीं, गुनगुनाते नहीं है कभी, मतलब बाथरूम सिंगर टाइप ऐसा नहीं कुछ? कुछ तो गुनगुनाते होंगे।
1: नहीं, हमारा हमारा वॉइस इतना अच्छा नहीं है।
0: नहीं, ये तो देखिए वॉइस आपकी अच्छी नहीं है, ये तो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, ये तो सुनने वाले डिसाइड करेंगे। आप थोड़ा सा इसी गाने को गुनगुनाइए, देखें आप कैसा गीत गाते हैं।
1: तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, के मर जाएंगे हम। और नहीं,

0: तो कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उन्हें हम भी दिल से जुदा नहीं कर सकते, आइए उनसे बातें करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: नदिया से मैं,
0: हाँ जी नदिया से, हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं, हाँ जी बताइए।
1: मैं हूँ खुशी रोंगो हिना, ये फिल्म का गाना मैं सुनना चाहता है।
0: ये गाना सुनना चाहते हैं आप, हिना फिल्म का?
1: हाँ।
0: अच्छा अजय, उधर नदिया में बारिश वारिश हो रही है भाई साहब?
1: थोड़ा कुछ कुछ हवा रही।
0: अच्छा अच्छा, मतलब और आप ज्यादा चाहते हैं या नहीं? ठीक है, और नहीं जरूरत है, बहुत हो गया। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि और आप बारिश चाहते हैं ऊपर वाले से कि नहीं, बहुत होगी, आप जरूरत नहीं है?
1: वो तो बारिश का थोड़ा कुछ अच्छा है यार, वो जो मिट्टी है ना पूरा गिला गिला हो जाता है।
0: हाँ हाँ, ओके, चलिए ठीक है भाई, अच्छा लगा आपसे बातें करके, सुनवाते हैं आपकी पसंद
1: का गीत। सबको सुनाना चाहता है।
0: हाँ हाँ ठीक है,
1: आपको भी,
0: मेरे को भी, ठीक है।
1: हाँ।
0: चलिए भाई, दोस्त कॉलर फ्रेंड ने फरमाइश की है तो हम उनकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। वैसे आप समझ लीजिए लगभग 12 मिनट में आपके साथ हूँ, एक या दो कॉल और ले सकता हूँ। नंबर आपको डायल करना है 2213-1341। कार्यक्रम छायालोक में मैं आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा हूँ।

0: चलिए दोस्तों 2213-1341 पर कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए।
1: हाँ दादा, मैं पायल बोल सी बेलखुरिया थे के।
0: बोलिए पायल, क्या सुनना चाहती हैं, कैसी हैं आप?
1: भालो अच्छी, तुमने सवाई भालो तो?
0: यस यस, बताइए।
1: तुम्ही तुम्हारे पसंद में तो एक गान सुनियो दादा।
0: आप अपनी पसंद का नहीं बताएंगी?
1: ना तुम्हार पसंद तो ही होवे, कोनो प्रॉब्लम नहीं।
0: अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और हेलो।
0: हाँ पायल बोलिए।
1: हाँ, आमी की दुटो लाइन सुनाते पड़ी तुम्हारे?
0: यस, एकदम एकदम, क्या बात है, सुनाइए।
1: ओके ठीक है, बाय।

0: दिल मासूरा के मेरा मौसम बहार क्या। थैंक यू।
1: क्या बात है, थैंक यू तो हमें बोलना है पायल, है ना। बहुत अच्छा गीत आपने गाया,
0: ठीक है।
1: हाँ धन्यवाद। चलिए दोस्तों, पायल ने मुझ पर छोड़ा है तो कोई भी गीत जो कंप्यूटर जी चाहें शायद आपको पसंद आएगा, लीजिए सुनवाता हूँ।

नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 9 बजने वाले हैं। अब आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मरारका को यहीं आज्ञा दीजिए, मिलूंगा फिर किसी अगली शाम। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष लीजिए सुनिए विशेष वार्तालाप, प्रसारण का बदलता क्षितिज। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर के जी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल।
1: वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स, ऑल आर व्यूअर्स हियर इन द लाइव ऑडियंस हियर एंड ऑफ कोर्स हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक री इमेजिनिंग ब्रॉडकास्टिंग, प्रसारण का बदलता क्षितिज। इस टॉपिक में दो शब्दों

0: बहुत एक्साइट किया, और सबसे पहला है री इमेजिनिंग और दूसरा है बदलता, क्योंकि यही दो शब्द हैं जिनमें गति है, प्रगति है, दिस क्रिएटिविटी, दिस एक्साइटमेंट, दिस मूवमेंट. एंड आज का फोकस भी इन द कॉन्वर्सेशन, वी हैव अ वेरी एस्टीम्ड पैनल, डाइवर्स पैनल अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स. आई थिंक हर 5 साल में जनरेशन बदलती है, तो डेफिनेटली अक्रॉस डिफरेंट डेमोग्राफिक्स हमारी पैनल भी है, विद वेरिड एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस. और इसमें से बहुत सारे लोग हम में से ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली पिछले 15-20 सालों में इस क्षितिज को बदलता हुआ देखा है. सो इट्स लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर सी चेंज आया है. सबसे पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन. अर्चना कपूर इज अ वेल नोन कम्युनिटी मीडिया स्पेशलिस्ट, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर विद ओवर 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हर फ्लैगशिप इनिशिएटिव रेडियो मेवात इज अ 2-time नेशनल अवार्ड विनर. शी इज द रिसिपिएंट ऑफ क्वाइट अ फ्यू लॉरल्स एंड अवार्ड्स. अर्चना, वेलकम टू द प्रोग्राम. हमारे अगले पैनलिस्ट डॉक्टर अंजुम शर्मा. डॉक्टर अंजुम शर्मा कवि, संपादक और पत्रकार हैं, जिन्हें साहित्यिक और सांस्कृतिक एरियाज में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है. वे कम्युनिटी रेडियो, आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी हिंदी से भी जुड़े हैं. डॉक्टर अंजुम को अनेक अवार्ड से भी नवाजा गया है. अगले पैनलिस्ट उमेश चतुर्वेदी. With over 30 years of experience in the news industry, including the print and electronic media, Umesh joins us here today. More than 15 of these years were spent in television news, covering the entire functional gamut of the news business, that is reporting, scripting, research and post-production. Well, currently he's working with Prasar Bharati. He's also a media teacher and also engages with actually designing the syllabus, which is done for a number of universities for their mass communication course. Our final panelist, Dr. K.G. Suresh. Dr. K.G. Suresh is a senior journalist turned academician. He is currently the director of the India Habitat Center and is also a senior adjunct fellow with a leading think tank of the Global South Research and Information System for Developing Countries. He has served as the Vice Chancellor of many universities, including the Indian Institute of Mass Communication, Delhi, which is India's premier media training institute. And of course, he also is a recipient of many prestigious awards. And of course, a very, very warm welcome once again to the audience. I think when we're talking in front of a live audience, the tone, tenor and energy changes rather than just a discussion in the studio. So thank you very much, All India Radio, for ensuring all this for us today. So I'd like to actually start with you, Anjum. जब हम क्षितिज की बात करते हैं, जब हम एक न्यू होराइजन की बात करते हैं एंड जेनरेशनली जब हम चेंज देखते हैं, तो अगर हम रीइमेजिन कर रहे हैं, रीविजिट कर रहे हैं इंटर जेनरेशनल शिफ्ट जो इस रीइमेजिनिंग में और रीक्रिएटिंग में आएगा, वो किन एरियाज में आना चाहिए?
1: मुझे लगता है कि जब हम रीइमेजिन कोई भी चीज कर रहे होते हैं, इसमें एक शब्द है री, हमें फिर से विचार करना है, फिर से इमेजिन करना है. तो जाहिर है आपके पास अगर स्मृतियां नहीं है तो आप नई स्मृतियां बना भी नहीं पाएंगे. यानी आप रीइमेजिन कैसे करेंगे? आपके पास पहले का कुछ ना कुछ होगा, उसके आधार पर आप रीइमेजिन कर पाएंगे. तो मैंने वो दौर देखा है जब अमीन सयानी के बाकायदा कार्यक्रम आया करते थे और हम उन्हें सुना करते थे, तो हमने भाषा के स्तर पर हमने रीइमेजिन करना शुरू किया. जब हम कहते हैं कि रेडियो की भाषा बहुत चित्रात्मक होनी चाहिए ताकि मैं उसको इमेजिन कर सकूं, क्योंकि रेडियो का जो मीडियम है वो सबके लिए है, उनके लिए भी है जिनके पास दृष्टि नहीं है और उनके लिए भी है जिनके पास है, कि हम किस तरीके से भाषा के स्तर पर हम बदलाव लाते चले गए. जब मैं अब उसको रीइमेजिन करने की कोशिश करता हूँ तो पूरा 2000 का दशक निकल जाता है और 2010 का पूरा एक दौर आता है जिसमें हमने चैनल्स की बाढ़ देखी, और उसके बाद 2020 के अगर हम दशक में आए, खासतौर पर 2012-13-14 के बाद में जब हमने इंटरनेट की क्रांति देखी, जो क्षितिज में बदलाव आया है वो फीडबैक के लेवल पे आया है. विल्बर श्रम जिसे केवल सेंडर, मैसेज और रिसीवर की बात करते थे, वहां पर डेनिस मैकवेल की एक थ्योरी काम करती है जिसमें वो बोलते हैं कि श्रोता या रिसीवर अब पैसिव फॉर्म में नहीं रह गया है, वो एक्टिव है. तो बदलते हुए क्षितिज में मुझे तुरंत आवाज अपनी सुनाई दे रही है. पहले मुझे साप्ताहिक रूप से एक पत्र लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं तुरंत उसको देख पा रहा हूँ. इस बदलते हुए क्षितिज में हमने रेडियो को टीवी पर आते हुए देखा है, जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि रेडियो जो सुनने की चीज है वो मैं देखते हुए सुन सकता हूँ. यानी आप

0: कि एक चित्र लगा दिया गया है और अब मुझे पता है कि गौरा जी कैसी दिखती हैं। पहले मुझे नहीं पता था वो कैसी दिखती हैं, तो मैं उनको इमेजिन करते हुए, उनका चित्र देखते हुए, हम चारों का मुझे पता है शाम को यूट्यूब पे एक थंबनेल लग जाएगा और बाकायदा उस पर लिखा जाएगा कि क्या क्या आ रहा है, रात में हम किस बारे में विचार कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। पहले आपके पास सुविधाएं नहीं थी, तो बदलते हुए क्षितिज में हमने ये सब चीजें देखी।
1: थैंक यू अंजुम। कभी कभी ना देखने में ही सुंदरता होती है और कभी कभी ये चिंता भी होती है कि जो विजुअल मीडियम होता है, केजी विल बी कमिंग टू यू फॉर दिस, दैट समटाइम्स द विजुअल मीडियम कैन टेक अवे फ्रॉम द ऑडियो इंपैक्ट। यू हैव सीन ट्रांजिशन, टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ अ विजुअल रेडियो। हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन? हाउ डू यू सी दिस?
2: आई थिंक दैट रेडियो इज समथिंग दैट हैज सर्वाइव्ड the vicissitudes of technology. Telegram has wound up. Landline telephone has wound up, but not radio. The romance with radio continues. The charm of the radio continues even today in different formats. And I think one of the reasons is that radio carries a certain amount of trust and credibility. I have worked in other media also, but when you make a comparative study, it becomes clear that radio has earned, and it's an earning, earned much more trust and credibility than many other media. So that is one reason that people continue to trust it. Secondly, radio remains relevant to a large segment of our population. Whether it is the agriculturist or the fisherman, it remains relevant to the common man. It hasn't become irrelevant, disconnected with the people at large. Now, in this context, I'll come to your question. And that is, the future is certainly visual storytelling. Storytelling has always been the, I would say, the forte of mass communication. But now we are getting into the age of visual storytelling, where, because it has been said that a photograph can speak 1,000 times better than a word, so it is more powerful. So the visual is now part of audio. That's why now we are talking about audio-visual mediums. And the digital revolution which has happened has enabled this. And I'm glad, I must say, that one of the most important programs in recent times on radio worldwide has been Mann Ki Baat. It has become a force multiplier. What visual does is force multiplication. Because what is in the realm of imagination, as he said, you can see it there. So I believe that people are increasingly, yet at the same time, you also see, when you talk about the future or reimagining broadcast, you also talk about podcasts. Now, podcasts are no more just the audio part of it. It is also the video part of it. So I think that broadcast is entering a very, very exciting era. There is a combination of both audio and video, and this is going to be the defining, so far as the paradigm shift in broadcasting that is happening.
1: Umesh, KG just spoke about, I think, the understanding that broadcasting and telecasting are now, broadcasting is going to subsume in itself for telecast. That's the need of the hour. Then he earlier spoke of romance and charm. So do you think that when we're looking at broadcasting as visual and audio, in the future, as we're looking at, would radio by itself, as separate, I know broadcasting is definitely an umbrella term, would radio still retain a USP, and what would it be?
3: आकाशवाणी के 90 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। 8 जून को 90 साल पूरे होने पर इसी कैंपस में कार्यक्रम हुआ था और उसमें हमारे आकाशवाणी के महानिदेशक ने बाकायदा इसकी घोषणा की थी कि अगले साल से हम कुछ शहरों में विजुअल रेडियो स्थापित करेंगे, कि विजुअल रेडियो की किस तरह से उपयोगिता भविष्य में दिखेगी और किस तरह से उसको विकसित होना है, किस तरह से उसको प्रसारित होना है, किस तरह से उसका प्रसार होना है। लेकिन मुझे लगता है कि इसको याद करना चाहिए यहाँ कि रेडियो के विकास में, वैसे तो 1923 से ही भारत में प्रसारण शुरू हो गया था, रेडियो क्लबों से शुरू हुई ये प्रसारण की यात्रा यहाँ तक पहुँची है और इसमें तकनीक के तमाम तरह के सोपान तय हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि 1995 का साल है जो रेडियो के लिए एक अलग तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इंटरनेट उसी दौर में आता है और उसी दौर में कमोबेश एक आध साल आगे पीछे एफएम, जिसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूला कहते हैं, वो आता है। उस दौर में हमारा बचपन रहा है, जब हमारे यहाँ रेडियो आता था तो उसको एक सोशल स्टेटस के रूप में देखा जाता था। हमने वो यात्रा भी देखी है, जो पारंपरिक तकनीक थी उसको भी देखा है और एफएम और इंटरनेट के बाद की भी तकनीक को देख रहे हैं। और 1995 की जो इंटरनेट क्रांति है, उस रेडियो को एक जीवंत राह देता है। विजुअल रेडियो थोड़ा सा कल्पना करना कठिन होता है कि एक रेडियो भी ऐसा हो सकता है जो

0: हो सकता है। 1995 के बाद इंटरनेट आता है और जो माध्यमों का मीडियम्स का कन्वर्जेंस होता है, तो आप उसमें देखेंगे कि हर माध्यम में समाया हुआ है। अखबार जो है वो भी इंटरनेट पर है, और ट्रेडिशनल अखबार भी है जो हम पढ़ते हैं कागज पर, रेडियो भी उसी फॉर्म में आ चुका है, ट्रेडिशनल रेडियो सेट में भी सुन रहे हैं और हम उसको इंटरनेट के माध्यम से भी सुन रहे हैं। रेडियो के भी जो छोटे छोटे बाइट्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, वो भी आ रहे हैं। स्मृतियों से शुरू हुई यात्रा तकनीक के इस लेवल पर पहुंच गई है, लेकिन इस सब पूरी यात्रा में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हर आशंका को झुठलाते हुए रेडियो जिंदा है, और रेडियो के पास 70-80 साल का प्रतिबद्ध श्रोता भी है, डिवोटेड लिसनर, और जेन जी भी है, और सबकी चुनौती को सामना करना है रेडियो को।
1: जी, आपने एक बात कही कि रेडियो अभी भी जिंदा है, और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सारे मीडियम एक मीडियम दूसरे मीडियम में समाया हुआ है। बट जस्ट टू शेयर कि आकाशवाणी का एजेंडा हमेशा अलग रहा है, आउटरीच का है, किसान का है, डिफरेंट, तो आई थिंक उसको रखते हुए इन टर्म्स ऑफ लिसनरशिप जब हम देखते हैं और आंकड़े भी सामने आए हैं, तो आउटरीच अभी है। मैं आपसे ये सुन रही हूँ कि हमारे जो श्रोताओं की जो डिवीजन होती है, जो लिसनर्स की डिवीजन होती है, कैटेगरीज अलग होती हैं, और अलग अलग कैटेगरीज को कैटर करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मीडियम, एंड वी ऑल एवरी मीडियम परफॉर्म्स अ रोल, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे आउटरीच हो, चाहे सोशल ब्रॉडकास्टिंग। आपके पास आते हैं अर्चना, जब सबका अलग अलग रोल है, कम्युनिटी रेडियो में आपकी माहिरता है, यू हैव बीन फ्रंट रनर इन प्रोपगेटिंग दिस एंड एस्टैब्लिशिंग दिस एज अ वायबल मीडियम, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू सी द होराइजन एंड व्हेन यू सी आगे, before you talk about community radio and understanding from you and your experience, what are, say, three new ideas that could actually reimagine broadcasting?
2: Jo madhyam जिसके लिए बना है वो अगर उसी में एक्सेल करे तो उसकी रीच, उसकी आइडेंटिटी, उसकी यूनिकनेस बनी रहेगी। इफ वी स्टार्ट गेटिंग विजुअल, वी आर ओनली सेकंड बेस्ट, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दूरदर्शन, वी हैव सेवरल अदर प्राइवेट चैनल्स, वी ऑलरेडी आर सीइंग द प्रेशर ऑन प्राइवेट एफएम्स टू गो डिजिटल। आई डू द रेडियो फेस्टिवल, आई हैव डन 9 एडिशंस ऑलरेडी, एंड व्हाट आई हैव सीन देयर, एंड आई हैव टॉक्ड टू सम ऑफ द बेस्ट, लाइक यू नो द मोस्ट फेमस पीपल, एंकर्स, आरजेस, व्हाटएवर you call them, from some of the channels that he mentioned and others also in smaller towns, they said ki hamari awaaz hamari pehchan thi, hum jab kisi dukaan mein ghuste the kahin log hame sunte the, abhi ye jo ek hod machi hui hai na, visual visual visual, we have no recall. हम आज भी 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद अमीन सयानी को याद करते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी आवाज हमारे कानों में अब भी गूंजती है। वी डू नॉट need to know his face. I think that words give you the possibility of a million fantasies. So it gives you so much of scope, so much of play, so much of fantasy, which visuals limit. Because an AI, I'm sorry to say, is limiting us further. Because what is happening is that everybody is using AI to generate messages and to create posters. That entire creativity is just getting lost. I'm not saying that don't use it. Use it as a tool, but not as a content creator. That is what I'm trying to say. Now, coming back to your question, everybody talked about when there was this transformation. Community radios, the policy came in 2002. We got operational only in 2004, the first radio, Anna Radio. And then 2006, tak only educational institutions were allowed to broadcast, to operate a community radio. In 2006, and the policy changed, 2008, the first NGO-owned community radio came into being. What is important is what are these radios doing? This is a medium which belongs to the people. This is a true, true representative of democracy. It is by the people, for the people, and of the people. That is what a community radio is. You can only get the license if you have a community. You have to have a content community local, you have to have a governance committee that is local, and you have to broadcast 50% of the content which is produced by the community, and out of that 50%, 25% has to be about women, by women, and for them. I think which other medium is doing this? And that is why I have so much faith in community radios, and we are going slow, it's fine, but we are stable. एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट.

0: इम्पोर्टेंट, एज लॉन्ग एज हम हाशे पे रहने वाले लोगों की आवाज़ें ला रहे हैं तब तक हम अपना काम कर रहे हैं। हम ये माइक कुछ ऐसे लोगों के सामने रख रहे हैं, उनकी आवाज़ों को एक मंच दे रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनके पास भी कुछ कहने को है। यही हमारे देश की विविधता, यही हमारे देश का राष्ट्र निर्माण का कदम, और यही हमें वो बनाता है जो हम आज हैं। मेलबर्न की एक रिपोर्ट थी, जब कोविड हुआ रेडियो को ही लोगों ने ट्यून इन किया, एक ही विश्वसनीय सोर्स था, वो था रेडियो, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड थिंग आई थिंक कि रेडियो के पास जितनी आर्काइव्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो इज इन इटसेल्फ
1: अ लाइब्रेरी, इट्स अ ट्रेजर ट्रोव,
0: या इट्स अ ट्रेजर ट्रोव। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर I see the role of radio as a library of the past, of history, as an infrastructure. And thirdly, I see it as the voice of people. I see it as a local medium that connects with people, that talks to them in their language, and that talks to them about what concerns them. Because if we get into the AI trap, we will become subjects of algorithms. As Anjum said, we'll come back.
1: I think you're right. There are lots of many views on this. And before I come to you, Anjum, I'd like to also say that dissent is the essence of progress. ये भी समझते हुए अंजुम कि क्षितिज, so थोड़ी doomsday predictions हुई, and we also know that things can go bad, things can go good. And I think to say that radio is a safety mechanism, I think again, public service broadcasters are already playing that role. Archives are happening, a lot of work is happening. And you're absolutely right, that's the way to go. Anjum, आपकी हम नजर लाते हैं क्षितिज पे, वो नजर ही डाल सकते हैं क्योंकि वहां पहुंचता तो कोई नहीं है, जितने पास जाओ उतना दूर चला जाता है। तो जब हम कोई क्षितिज को देखते हैं आगे, और ये अच्छी बात है, इसी बहाने हम क्षितिज की डिमांड में या नीड में आगे बढ़ते हैं। सो जब हम आगे देखते हैं और हम ऑडियो विजुअल इससे अलग जाते हुए ये समझने के लिए कि आजकल अगर हम ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, देखिए कितना कुछ है, वो कहते हैं जब चूज करने के लिए इतना कुछ होता है तो मैं कुछ भी नहीं चूज कर पाती, तो इसमें हम डिफरेंशिएशन कैसे ला सकते हैं, क्वालिटी पे एम्फेसिस इन ब्रॉडकास्टिंग कैसे आ सकता है?
2: जी, एक शब्द उठा, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, जाहिर सी बात है। विजुअल पॉडकास्ट तो बहुत बाद में आया, साल 2002 में द गार्जियन के रिपोर्टर थे बेन हैमर्सले, उन्होंने कहा कि आने वाला दशक पॉडकास्टिंग का होगा, क्योंकि उस टाइम पे आईपॉड बहुत फेमस हुआ करते थे, तो आईपॉड पर जो कास्टिंग हुई उसके थ्रू वो पॉडकास्ट फैलता चला गया। साल 2007 में रिकी जार्विस बहुत बड़े पॉडकास्टर रहे, किसी को अंदाजा नहीं था कि चार साल के भीतर भीतर जो मीडियम अभी अभी आया है वो मीडियम इतना लोकप्रिय हो जाएगा कि 1 मिलियन डाउनलोड हो जाएंगे और आप उसको बाद में सुन सकते हैं। बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा से लेकर तमाम लोगों ने पॉडकास्टिंग शुरू की और लोगों ने उसको दूर तक पहुंचाया। कोविड के समय पर ऑडियो पॉडकास्टिंग बूम पर थी, कोविड के बाद जब रील्स का दौर आया उसमें 50% की गिरावट हुई है, यानी ऑडियो पॉडकास्टिंग धीरे धीरे कम होती चली गई। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान धीरे धीरे वीडियो पॉडकास्टिंग पर चला गया, तो आप ऑटोमेटिकली विजुअल मीडियम की तरफ बढ़ चुके हैं। हाँ, जो बात इन्होंने क्वालिटी की कही मैं मानता हूँ, दरअसल होता क्या है, जब आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं अचानक से, तो आपका ध्यान समाज की तरफ कम, ऑडियंस की गिरफ्त पकड़ने की तरफ ज्यादा रहता है। आप अपने एल्गोरिथम को एक ही तरीके से ले जाना चाहते हैं क्योंकि रेंज आपकी बहुत बड़ी हो जाती है, वहां पर क्वालिटी गिरती है क्योंकि मुझे व्यूज की अब दरकार है, मुझे कंटेंट नहीं, मुझे इस टाइम क्वालिटी नहीं, मुझे क्वांटिटी चाहिए। जैसे ही आप व्यूज की तरफ जाएंगे आप क्वालिटी से गिर जाएंगे। आकाशवाणी रेडियो ने हमको उच्चारण सिखाया, हमें सिखाया कि क ख ग घ ङ के बाद ख और क और ग भी एक ध्वनि होती है। यहाँ पर आप बदलते हुए क्षितिज को देखते हो।
1: आई थिंक आप जो बात कर रहे हैं कंटेंट की, और कंटेंट को कौन ड्राइव करता है, क्या ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है या लोग जो कंटेंट मांगते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं या कंटेंट में? एंड आई ऑलवेज नो दैट दिस इज अ वॉर व्हिच इज इनवेरिएबली देयर, हु इज रिस्पांसिबल फॉर द क्वालिटी, डू वी गिव व्हाट इज आस्क्ड फॉर और डू वी टेल देम व्हाट यू शुड आस्क फॉर? एंड आई थिंक ये दुविधा रही है। केजी, कमिंग टू यू, टू थिंग्स, वन इज ऑफ कोर्स हाउ वी द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी लाइक यू स्पोक अबाउट इन द फोर्स मल्टीप्लायर, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू दैट इन टर्म्स ऑफ द चेक्स एंड बैलेंसेस स्पेशली फॉर द पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कि कंटेंट के गार्डरेल्स कुछ ज्यादा ही हैं। कभी कभी हम मानते हैं कि गार्डरेल्स हमें बढ़ने

0: नहीं दे रही, हमें एक्सपैंड नहीं करने दे रही, हमारी विजन सीमित रख रही है, पर कभी कभी हमें ये भी लगता है कि ये मेरी टारगेट और गार्डरेल्स मुझे आगे लेके जा रही हैं। तो ये बैलेंस कैसे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर मेंटेन करेगा कि हम फिर भी रेलेवेंट रहें।
1: जब मैं रेडियो में प्रोग्राम देके बाहर निकलता हूँ और वो ब्रॉडकास्ट होता है तो मुझे 10 फोन आज भी आते हैं लोगों का कि आपको आज इस विषय पर सुना। ये मुझे किसी और माध्यम में नहीं मिलता है। आई गो टू सेवरल प्लेटफॉर्म्स बट दिस इज द वन प्लेटफॉर्म वेयर आई स्टिल रिसीव फीडबैक एंड पीपल टेल मी दैट सर। कई लोग ऐसे कहते हैं हम तो शाम को ड्राइव कर रहे हैं, मैंने किसी को बताया नहीं होता है और हमने चलते चलते सुना। तो ये रेडियो का चार्म है। रेडियो का चार्म है कि मैं बगैर टीवी में देखे, बगैर मोबाइल को पकड़े, मैं अपना डे टू डे काम करते हुए भी मैं रेडियो के म्यूजिक को, डिस्कशंस को सुन सकता हूँ। दैट इज द चार्म ऑफ द रेडियो दैट स्टिल एंड्योर्स। ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात कही, क्रेडिबिलिटी ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है, इंडिविजुअल्स के साथ नहीं जुड़ी है। ऑल इंडिया रेडियो की मैं बात कर रहा हूँ, यस ऑल इंडिया रेडियो की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज भी मेजॉरिटी ब्रॉडकास्टिंग मतलब ऑल इंडिया रेडियो है। ऑल इंडिया रेडियो इज सिनोनिमस विद ब्रॉडकास्टिंग। आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट एफएम चैनल्स बट रेडियो टुडे इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज द ऑल इंडिया रेडियो द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड हाउ क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी बिकॉज हम सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं, हम सनसनी नहीं फैलाते हैं, हम टीआरपी के रेस में नहीं है, हमें जो है माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं रेडियो का बुलेटिन सुनता हूँ तो मुझे पता है कि आज देश में क्या हुआ है, खेलकूद के क्षेत्र में क्या हुआ है, राजनीति में क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या हुआ है। आई गेट ए बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लोबल न्यूज। आई डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद वन न्यूज। आई बिलीव दैट ऑल इंडिया रेडियो में आज भी आप शाम को सुनेंगे तो उसमें पूरे देश भर के समाचार होंगे। लास्ट क्रेडिबिलिटी की बात, हम मन की बात कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। मन की बात की स्वीकार्यता पर पीएचडी हुए हैं कि क्या सोशल इंपैक्ट उसका। एक प्रोग्राम है जहां लोगों को सुना जाता है, उनके व्यूज को लिया जाता है, उनसे बात किया जाता है और ऐसे ऐसे चीजों के बारे में हमको बताया जाता है जिसके बारे में देश के मुख्यधारा की मीडिया को भी कोई खबर नहीं है कि ऐसा अच्छे काम हो रहे हैं देश में। उसके बारे में स्पेसिफिकली द प्राइम मिनिस्टर रेजेस दोस पॉइंट्स। अब मैं विजुअल स्टोरी टेलिंग कि जो आपने बात कही, मैं ये कहूँ कि भाई हमारा तो टेलीफोन का तो मतलब तो लैंडलाइन था तो उसको तो रिटेन करना है, हमको इनोवेट करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने फंडामेंटल्स को छोड़, लेकिन हम डाइवर्सिफाई करें। हम जो है विजुअल मोड में भी जाएंगे, हम जो है सोशल मीडिया में भी जाएंगे, लेकिन हमारा कोर स्ट्रेंथ हमारा ब्रॉडकास्टिंग रहेगा। बट वी विल नॉट हेजिटेट फ्रॉम यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्ट विल रिमेन, that we should always remember, because television channels का काम नहीं था website चलाना। क्यों चला रहे हैं? Short news क्यों चला रहे हैं? Reels के format में क्यों आ रहे हैं?
2: अखबार भी निकाल रहे हैं
1: क्यों? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि आपको टेक्नोलॉजी और वक्त के हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई करना है। That does not in any way dilute your core strength। और हमारा कोर स्ट्रेंथ ब्रॉडकास्टिंग है। एंड ब्रॉडकास्टिंग का एक लास्ट बात मैं कह दूं, I believe that not just with regard to farmers and fishermen and all that, इस देश के कलाओं को, संस्कृति को संवर्धन करने में आकाशवाणी का एक बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश के कलाकारों को तैयार करने में, आज भी कलाकार मुझसे आके मिलते हैं हैबिटेट सेंटर में और मुझसे कहते हैं सर मैं आकाशवाणी ए ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, मैं ये ग्रेड आर्टिस्ट हूँ। उनका रिकॉग्निशन है। आकाशवाणी की इतनी बड़ी एक भूमिका है, इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी। When it comes to development journalism, sorry to say, none of the private channels are talking about development journalism. Only Prasar Bharati is talking about, and community radios, of course, are an integral part of that.
0: Umesh, I think social interest ho, chai entertainment ho, commercial interest, sustainability of any medium, even sustainability of a channel, a lot depends on kya wo sustainable hai. To ye commerce, social, entertainment, isko balance karna future mein aap kaise dekhte hain?
3: मुझे लगता है कि थोड़ा अपने इतिहास को भी और उसके बेस को भी झांकना चाहिए कि आज जो प्रसार भारती रन कर रही है वो बीजी वर्गीज कमेटी की सिफारिशों से रन कर रही है। जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर को जो होना चाहिए उसको अपनी परंपरा की पूंजी की बुनियाद पर, अपने संस्कृति की पूंजी की बुनियाद पर आगे बढ़ना होगा और उस पहचान को बनाए रखना होगा। और कमर्शियलाइजेशन की आप जो बात कर रही हैं, वो कमर्शियलाइज प्रसारक और सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका में कुछ तो अंतर होगा ही, वो उस तरह से बाजार के हवाले नहीं हो सकता। आपको मैं बता दूं, वो चुनाव की गिनती होती थी ना, तो जो फाइनल ब्रॉडकास्ट करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए और भरोसा करने के लिए हम सब लोग रेडियो की कमेंट्री सुनते थे और अपने एक इनपुट डिपार्टमेंट की एक ड्यूटी लगा के रखते थे कि भैया जरा रेडियो से टैली करते रहो। क्यों? क्योंकि रेडियो ने उसने डूज और डोंट का एक बहुत क्लियर वो बना के रखा। मैं यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बहुत स्पष्ट है कि जब तक हम पूरी तरह से वेरीफाई नहीं करते हैं तो हम कोई खबर नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है जो आपने कहा, प्रसार भारती या रेडियो प्रसारण जो है, जो यहाँ चर्चा चली, तो मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि हमारी पहचान हमारे मूल ऑडियो मीडियम के ही रूप में है और बनी रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, रेडियो अगर विजुअल हो रहा है तो विकास के साथ कदम ताल कर रहा है और तकनीक जो है ना आपको अपनी पुरानी पहचान में बांधने नहीं देती, वो आप एडाप्ट करें चाहे ना करें, वो आपको एडाप्ट करने के लिए मजबूर करती है। मुझे लगता है रेडियो प्रसारण के साथ भी वही बात है, जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना अपना परसेप्शन सिर्फ थ्रो करते रहेंगे।
0: एक सुंदर शब्द पे आपने इस कार्यक्रम को एक आई थिंक अंतिम पड़ाव पे ले आए हैं, परसेप्शन, और वही शब्द है जिससे हमने शुरुआत की थी। हमने व्यूइंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू की बात की थी, एंड मेनी ऑफ द पीपल इन द ऑडियंस आर कनेक्टेड टू ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक काफी सारे तार अंदर भी खनके होंगे, है ना, सितार बजा होगा। लाइक टू इनवाइट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस।
2: जी, मेरा नाम कीर्ति बैद है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ आकाशवाणी के प्रसारण कर्मियों पर। तो आकाशवाणी का जो आर्काइव है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बात करें।
0: सो मैं ये सवाल अपने सारे एक्सपर्ट्स को देती हूँ, एंड कौन बात करना चाहेगा?
3: आकाशवाणी का बहुत ही समृद्ध आर्काइव है। रेडियो ने खासतौर पर शास्त्रीय संगीत को निष्ठा से संरक्षित किया है और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी थाती है, ना सिर्फ आकाशवाणी की यह थाती है, ना सिर्फ यह प्रसार भारती की है, बल्कि यह भारत की थाती है। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूँगा, आपको संविधान सभा की पूरी डिबेट्स मिल जाएगी यहाँ, और जिन आवाज़ों की पहचान की हम बात करते हैं उन पहचान को भी अगर आपको ढूंढना है, खोजना है, तो आर्काइव में जा सकते हैं। और एक बात और है कि आर्काइव का अपना यूट्यूब एक अलग से चैनल भी है, आप उसमें अद्भुत अद्भुत इंटरव्यू भी सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, आई थिंक वी विल क्लोज द प्रोग्राम हियर। अर्चना, अंजुम, उमेश, केजी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम।
4: प्रसारण का बदलता क्षितिज, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये विशेष वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और इंडिया हैबिटेट सेंटर के निदेशक प्रोफेसर केजी सुरेश, फिल्म निर्माता और मीडिया विशेषज्ञ अर्चना कपूर, वरिष्ठ पत्रकार, कवि और संपादक अंजुम शर्मा और प्रिंट और मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। इस वार्तालाप का संचालन कर रही थी वरिष्ठ प्रसारण कर्मी गौरा धवन लाल, प्रस्तुति सहयोग जय सिंह और प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: दिल की उमंगे हैं जवान।
1: आप भी गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताओ। पामा पाधा पाधा सपा, दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए।
0: दिल की उमंगे हैं जवान,
1: बहुत अच्छी,
0: रंग में डूबा है समा,
1: वाह वाह।